0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 8 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Host Jeremy Clarkson is set to return for more episodes of Who Wants to Be a Millionaire and its spin-off, Millionaire Hot Seat. UK network ITV has ordered 15 episodes of the flagship quiz show, as well as 20 episodes of the Hot Seat spin-off, which launched in Jan this year and is also hosted by Jeremy.
1: City FM 89.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
8: Pura hafta raabta barqarar. Jazz Lajawab Plus offer ke saath abhi *5655 hash dial karo aur pao 8GB data, 4000 jazz minutes aur SMS aur 80 dusre network minutes sirf 370 rupaye ke load mein. Bas offer lagao aur raho connected. Jazz ke saath aapki meri hum sab ki superpower. Sharaito zawabit lagu hain.
9: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat 2500.
10: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
11: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
7: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost no worries
4: City FM 89
1: We are playing your song
12: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
5: Ek duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है
8: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No Frost, no worries.
9: The heartbeat of your city. City FM 89.
10: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
11: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
12: A new era begins.
13: You're listening to City FM 89.
14: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Hire kar naya no frost IoT refrigerator jiska multi air flow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
7: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
8: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
9: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Pura hafta raabta barqarar Jazz Lajawab Plus offer ke saath abhi *5655 hash dial karo aur pao 8 GB data, 4000 Jazz minutes aur SMS aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
6: Pediasure से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
7: सिटी FM 89
8: City FM 89 is now live on WhatsApp.
9: It's so easy.
10: 0314-289-8989.
9: Save, text, voice note or call to get your song played.
10: And talk to your favorite artist. Only on City FM 89.
11: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
1: You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
2: City FM 89.
9: You got me going crazy.
1: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
5: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
6: Agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
5: Ek duni do do duni chaar.
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.
9: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to